0: खलायो बुनि पसंग जे गोबां कक खलायो जे बानिया खलायन काहाम काहाम खलायो जे नखं नायकलैतमोन एबा स्टेटास काहाम खलायतमोन अबा फियाबा कायसे कुसु तो दङ न खरक्सा खरक्सु तो दङ न फियाबा दाबो फनो सिनि पसंग अबहाय थाकलक आसु खलायो नुकजा गियाखौ फियाबा दङ गोरि बुया आबोनि बागै जों खाखलाव बेलायखैनो उंनानै नांगौहाय जायो फियाबा जों आबो लय गोरिखौ आसो खाखलकनि जे फान जे बर' रावनि खाखलकनि फान गोनां जे खाखलक बर'नि बेलायखैनो बर'नि लाइफो फान कतर खालाय ग्राक फान खालाय नुजाबाय फायो हेल' दाखुनो लामसगो फुंगाहा दाखनि नायनि सावन गिजिसा हाकसाल हायगाय फायो हाकसालं जागोन दिगिसा सतनै सागायनायगाय जागबनाय सिनि खानाय थनाय दाखु बुखक जों खोनाबाय माने বেলেগেনো হামবাই ফুঙ্ক চিনি ওয়াশে ওয়াশে যেন আশা খালায় চিনি বাক্সা বাক্সা বড় রক দঙ্গ খা বেলাইখেন বারা সাবতা মশা ফাটসা খায়ন আপনি কফিল দিও হ্যালো
1: হ্যালো
0: বখুন লামসগ ফুঙ্কা বেলেগেন লামসগ
1: জল জায়গায় খাইফ বাংলা ভাষা বাই সাতা খেলা আবহাওয়া

थै थांजांनाय राष्ट्रबखरो ताबुकनि सालो प्रजुक्तिनि सिनि लाखमनि लगिसं गाहाम ओंथांखा बैसाग बाय बैसागनि साम्पलि काकलाय मानलिया हाय आबो हायनो जोंबो अ प्रजुक्ति बाय ताबुक काकलायमैया नांलायजा ताबुक मबाइल फन इन्टारनेट अनलाइन क्लास डिजिटल पेमेन्ट सिनि सालबुरुमनि लाखमाबो नांकुक मानि मानि ओंगै फायगा प्रजुक्ति सिनि लाखमानो गोलाय कद ते गाहामकु खलायै दिसाखा दिनैनि सालो फायदि साइन्टिस्ट इन्जिनियार ते मुंसासोग गोदाल सिनामनाय रगन बरम ते हामबाया फालायानो फायदि जों प्रजुक्तिनि न हामिया सामंग' फुनांनियावै सामं गाहाम ते कबि गोथार सामंग' थेफालायानो हिनै समय तांलायानो तामहिंगे अबो सामं गाहामनि बागैसे जों नरिव जोंआबनो सामं हामियाव थेफायावै सामं गाहामबो थेफावै देबो बोसकांग' लांनानि बागै समय तांलायानो आसुगजारा दिनै नेशनेल टेक्न'लजि दे अबनते ककिसा खनाका

बोखानि बेमार गोनां रगनि बागैबो दै हाइ प्रेसार गोनां रगनि बागैबो काजु बादाम गाहाम हैनै साजागौ दे जों ट्राभेलिं खालायथानाय फैयाबा काजु बादामनो बेलेगनो स्पेसियेल खालायै जों नाहारो तामेंगे जे जायगाव चामुं जाथाय रग मानथगियांगो आरो काजु बादाम जाखायैगे जिन अक फुंगै दंमानिबो नुजागौ अक खैदायांगै ते जों बर' रग नारवाय रग फायदानिबो जों काजु बादामनो रेवै नायर नारवायनो नायखलाय समानिबो जों नगो स्राबसानि बिसिंगो अबाहायनो अ काजु बादाम नो जों गायखै जों ब बाहायखलायै गाहाम मानमारै बोथाय मानैमान अबन दै गिजिसा सायमानलायानो काजु बादामनि बागै चिनि त्रिपुरानि हा बेलेखैनो गाहाम हिनै साजागै दङ तामहिके आसो गुबुननि थाय रगनिहाय गुबुननि हास्ते रगनि स्लाय चिन त्रिपुरा हास्तेनो गाहाम हिनै साजागौ तामहिके त्रिपुरा हास्ते हलं साफलजाक हाकजाकनि बागै अ हलं साफलजाक हाकजाकनि बागै काजु बादामनि बागै अ हा बेलेखैनो गाहाम काजु बादाम गायनायनि बागै जागाथाय आसो सायनानै नांगिया दे तुमुनो किजिसा तिला एबाखैबा जों किजिसा कुचु तिलाबो जों अब गायखायगे जिनि काजु बादामनि बागै बेलेखैनो गाहाम तामहिनखे याफांनि दै याफांगो दै जमिया दै खेलायै दै कचगै थानाय जात अबहाय हाहिनखे बेलेखैनो गाहाम दे अ काजु बादाम गायनायनि बागै काजु बादामनि जे पद्रे पद जात दंमोनि अबनि बिसिङाव भेंगुला वान भेंगुला फोर भेंगुला सेभेन उलाल थ्री बि एल ए थार्टि नाइन अबहाय जातनि बसंनि चारा गायखायनायखै बेलेखैनो मानमारि बोथाय गाहाम मानै मानो बुजुलि एबा कलम खालायमानि चारानो कायमानो जों गुटि कलम जोर कलम खालायैबो जों अबनो कायमानो तुमुंनो जों बुसलैनि गायनानै हिंगायखै गायसे पलिबेग चिकन साव खालायै बुसलै फबै चारा आजायरिबनो कलम खालायै गायखायखे मानमारि गाहाम तैबो मानि मानहैनो साजागै दङ दे चारा गायनानै हिंगायखे गायसे बुफांबाय ते गायसे बुफांनो बिसिंगो सेभेननि सिमि एइट एबाखैबा स्नि मिटारहाय अबहाय खालायै हाकसार खालायै हाखर खुरै हाखर बिथि ते मुस्कि रग्रिबै सापलै आपुनि सालसि बानि यागुल' जारानो गायखायखे बेलेखैनो गाहामनाय हाखर न जों बिथिरिबै जों हाखरनो मजिरि मातननाय आरो हारिबै आपुनि यागुल' जों जारानो मागायनाय अबहाय गेलायै तुमुंनो गायखायखे हेक्टर प्रतिबो चारा जों आरायस' हाय अबहाय टु फिफ्टि हाय निस्लायबो इसा गोबां बुफां जों हेक्टर गायसेबो गायै मानाय काजु बादामनो जों आसोग सारिनानै नाया खिजा खिजा खालायै जों मुस्कि गोरान र' इउरिया र' खिसि सारिखायखैनो जिनि उंगै थाङो दे बोलायो काजु बादाम बोलायो गायसा तामहिनायबोनो बोलाय करमसाय थांमानि बेमार नुजागौ तुमुंनो अबनो जों बिथि खिसिसा सारिरि माखायखे अ पाता बोलाय करमसामानि याक गागै मानाय दे खिसिसा जे बुफां एबा खैबा बुफां याफांनो जों सायैरिखायखै साफ सुथ्रा खालायैरिखायखै दे बेदेक गोथै दंमारनो साफ सुथ्राखाय रेखायखै जिनि बागै मानमारि गाहाम देबो मानै मानो आथानि बिसिबा निस्लायनो कम जों बिसि थाम रगनि सिमिखैनो जों बिनि मानमारि मानै मानो बिसि थाम बुफां गायमानि बिसि थामनि यागुल'नो बुबार फायै थाङो दे बोथायबो माननानै जेंगै थाङो बुबार नभेम्बर दे जानुवारि बोखागो बुबार फायो दे एप्रिल जुन जों बोथाय माननानै दाबो जेंगै दहा काजु बादाम बोथाय माननानै दे काजु

0: थाम्बुथाय नि जे बुसलै आ बुसलै न जों बुफां गासेव न बासि निसिमि दक्सि सेरजों मानिमानो दे गेजि गायसा बुसलै न तुमुन जों यगैया कय जों अबन खुगैनो हारकाहिंगे जों आरो 250 ग्राम हाय काजु बादाम मानो हाइकासो जरान रखनाबाके चिनि हुबारो काजु बादाम न दुइ कक थाइसा थाइनि बबो हाइखलाय जों चिनि तिरपुरा हासदेव काजु बादाम न जों गायै मान
1: आव हिंगे भाजि ताबो खानालायनो सा खाम करनि कक आव साब्रु बुरुमनि जों सामंगो नायखै नगो बर' रक ताबो आपसुकै फास्ट फुड न सानानि बागै हामजागो सानानि थांगै सेरै र निसिमि अकरा रगब आबहाय दुकानि बाजा सेरजाक सामुं रं न बेलेखै थगजागो हामजागो फियाबा आब' आलाय देखाय सामानि बिसिं दै सिनि गोबां मा सागो हामयाङै मानो आबन जों जाय खालाया ओंगै थाङो फायदि दिनै आबनि बिसिं दै एबा अ थक गोबां बाय बाजा सेरजाक सामानि बिसिं दै जेनि सागो दाम ओंगैमान अबनतै गिजा सिलायानो आबनि बिसिं दै जेनि सागो फेटि लिभार ओंमानि नुबजागो जों दिनै फेटि लिभारनो दै न गिसिजा सिलायानो हायं गोनांगोन फेटि लिभार एबा जेनि सागो जे अपुलि हिनमानि आब' बुफाम खामानि बेमार बाय मानजाखनाय बांग्रो रोगै दङ जरा बाय बाक्सा जिनि लाखमाव एबा लाखमानि बुमुल सिलायजागै दङ बाहायखै सिलायजाग हिनमाले दे अ दंमु सामुनि बुमुल सिलायजागमानि बागै न फेटि लिभार बेमार ओंमानि नुबजागै दङ साग नायग्रों दंनि ककदै जत्तनि अकपुलि एबा लिभारन नायमासो बुफाम दङ नांमानि बारा बुफाम अकपुलिव खाखेन आफ्रन लिभारनि जोंजा नुगजागो हिनै साग नायग्रो रगसाव फेटि लिभार एबा अकपुलिव बुफाम आलायदा खामानि बेमार दाल बिदाल फेरनि बागैन ओंगै मानो बाक्सा बर' रग जंग सुवाग नंमानि बागै सिमिन अ बेमार बाय मानजागो हिनै फिया अ ककुबैया साग नायग्रों रग साव फेटि लिभार दालनि दङ गायसा हिंखे सुवाग नंमानि बिसिंतै ते गायसा हिंखे सुवाग नङिया रग फानो मानजागै मानो 38% भारतनि लुकुरग न सुवाग नङिया एबा नन एलकहलिक फेटि लिभार बाय मानजागै दङ नन एलकहलिक फेट एबा बुफाम चिनि लिभारव खामानि नुबजागो बेलाय थक सामानि ओंया खेबा थकनि मानै सामानि थक बाय बाजा सेरजाक बा थकनि मुइ गोबां मुइ संप्रु थक गोबां नांमानि बारा ओरैवै सालायमानि आबनि बिसिं दैबो फेटि लिभार ओंगो हिनै जों सायमानो आबकारिबो बुफा एबा बुसै बुसुनि सागो दंखाय अ बेमार ओंगैमानो जरां सानि डाक्टार बाय नाजायाखै फेटि लिभारनि सिमि लिभार सिरसिस ओंगैबा मानो सुवाग नंमानि बागै डायबेटिसनि बागै हाइ ब्लाड प्रेसार हाइ कलेस्ट्रलनि बागै फेटि लिभारनि सिमि लिभार सिरसिस ओंमानि नुबजागो अ बेमार ओंखे बाहायखे सिनाय जों सागो फेटि लिभार ओंखा हिंखै साग हय हय गै लेंनाय आसम सागै फुंनाय बैसाग खिलिगनाय गोदै मानि रग जानानै मुसुंनाय थक बाय बाजा सेरजाक मानि रग बेलेखै जाना मुसुंनाय आबहाय जिनि सागो नुखा हिंखै सायमानदि जिनि सागो फेटि लिभार ओंगै दंखा होनै आबनि आंनि बाहायखै काटिनाय हिंखै जिनि सामुं नुंमुंनि सालब्रुम ब्रुमनिबो

0: काय से आहे के आशिक जरान रख नाका से सेबुक बरक लांगमानी को
1: कैसा साकलाई मुं आकाशवाणी सुकुशी बिसि कामनरगै सुकान्त एकाडेमी वो फाइनाय पास हाल 15 मे 2026 सान्जा दामदक तामा जराव कैसा पांडा खलान्यानि थांगै दङ अ पांडा ओ मोसामु नाकाटि रोसामु रक ओंनाय ओ पांडाव नान्यानि बागै जतनन गबक जागो अब नान्यानि बागै गसि जाग बुलाय रब तलांनानि नाङिया जतनि बागैन फियग जाग जतन थानानि बागै गबक जागो आसु जरा खनाका कैसा साखलायमु ताबो खनाबायन हायनि खरांगो अरुण जमतियानी खरांगो रुसाबजाक रुसाबमु

आउ खना दतक तांगसा आर सुरबि देबर मानि खरांग बेरे सबजक पुइल्या खने पेले के हायदा हबिनि यागलो फादि सिंग एसएमएस नालेने आउ एसएमएस फुंका हा मांग ताकर जोलानि कोनिका फुंका हम बुखुक जिग्नो रचा मुंगनि कक थायंखा मालायो बखाखने सिरिंग सिरिंग रचापनायंखा बिसनाते मानुसि हमबाया फरनानो आउ हमबाय

बाइदिफोर काहाम हां खे हेजामारानि कामबुचरनि आनि मुंखौ फुलो आनो गान कायसा खोनारदि गानि मुंखा बखाव कायसा गिरिमानि दारा बिसनाति आव जरब तेरफ तेरफ थाङै दङ फादिंगे खोनाथ'ग्रोसा मुङ जरा निनि बागै

आं खमलंगनि चुमुई हतिनि आमानि शालाबनि बागै आमानो लबै रेजामों दांसा खनारदि बाय आव हामानि शाल मिया लाइथां जाग मियानि शालो फियाबा दिनि नंगय हरखा नानो खनारे रिसिना खनाथ तगर चामुं हा किसिसा जतनि बागै।

आउ जों रेडियो क्विज पान्दाव सिंगि टंलाय मानि जिनि भारतनि जे पताका हायगाबा फ्लेग जातीय पताका हायगाबा फ्लेग न डिजाइन साबखाय जोंथ' सायमान लायो ना भारतनि जे पताका कुफुर गोख्रां हायगाबा कमला रेरे होनायनि आव कमला कालार होनै आव तिनथा कालार दं आरो आ कालार न अ पताकानि डिजाइन साबखाय कैसा बरक नि मु कैसा बरक सना मु हेदब आ पोटाका डिजाइन तो कैसा बरक न खानि हेदब बिनि मंग तमन शायमान के करन खदि 2326253 अ कक दुक नंबर अ कैसा कक दुक नय न सब तो हेलो हेलो हेलो अ फियाबा अ खरां खदावै मानिया दखा करे जायतक दि खाखायो मानै थागोन होनै

हेलो तामो बुंखा सैमानलिया हा फादिंगे रिचामुंगनि फाइसिंनो थांलाय सिवानो अजराव ककदुगले उराम उराम फाइनो दङ तेगायसानायनि ग्रोंगि जामान हेलो हेलो सैमानलिया अजरा फादिंगे रिचामुंगनि फाइसिं थांलायनो आबुनि यागोल ग्रोंलायनो ककदुगो

कौदुगु रामु राम फाइमा था गया फिया भाग करंगे से मान लिया। हेलो हेलो हेलो हेलो तामो बस जिंजालंका शाइनो मान लिया हा ग्रंगे से मान लिया नि खोरंग बखनाय दे दोंग शाइ मान लिया कौदुगले रामु राम फाइमानि था गया फिया भाग करंगे से मान लिया खोरंग खाना हरियांग

0: अब खाने टोंगले पनि हो जरा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हो तो किनी अतोकिनी रचापनाइका उदित नारायण भाई साधना सरगमनी रचामुङ खापनी मारे किचिङ ताको ते बुङसङ फाजि जरा तेरप तेरप थांग जते कछ सख ककदोक करंगिन एन हेलो
1: हेलो भाई दिपर कहाँ
0: दिपर कहाँ लामसोको सादी ताकु
1: आं लंगापुरन परदित से भाई
0: दो सादी ताकु
1: आ तिनी कक बरो गान मुखनाय मन ना
0: ए मानु मानु
1: आ गान गाइन ग ओ आ दुफुंग दुफुंग हेमान रे रे भाई
0: द द द अकन
1: आलाय तंग दिदो
0: हम आउ ताशिंगो चिनि बुखु गनलकी कयहरमानि पुइलानि रिचामं बखरेनि नासिंगे हिनि अबो फिया बांगनाय तुमानि हिमते हिमते नरो दिहिनो तमंग नबो अबो मानि हंके फादि बिनि अंगै ताखुक बिमोलि ओ हिमते हिमते रिचामं न खनालायनो

0: आउ खनाइ टोंगले मानि खनाथो खनाथो खा नरकनि कय हरजा कबक हरजा खेर चामुंग रक फियाबा ज्वारा केसेबनि बागै जतन नांकि चिकित्साके साइटो गन जे मानसाग्रे चामुंग खनारनानि हानुहाय चिनि ताखुक अनन्त साधन जमातिया हेमन्त कुमार जमातिया निर चामुंग कय हरजा खा बिनिंगे अर चामुंग खनालायन ते कायसा कक दो पाइथाक रमिनासिन हेलो
1: हेलो दिपर काहम बखु
0: ए लामसोग दिपर काहम ताखुक सादि साबुंखा
1: अर्जुन ठाकुर कानी मिलन देवर मा
0: द शादी ताकुंग मिलन
1: दिन्दी तोकिन कसा खानाव न अर्पुनी
0: बुर जामु
1: परदेशी जाके परदेशी आमन और सामन खरा द आं डेलीगेट कसा खानाय मोहरम परानी कुमु हराम गते खानाय तंगनाय जॉब
0: दिन
1: या कने पे हामबाय
0: द द द हामबाय आ हा फादिंगे आ अबन पाइथा कक दुख तेतो करंगनान जराबो करे दासिंगुचिनी ताखुक सहरमानी और जामुन खनाइन हालायन जरा

नांगो गोबां माहा कतरक अमनो सुनामनानि किरे जागो सुनामरिया केबेंलाय तंगु फियाबा जों दिनि अमो सुनामै मानखा अबन बारा क कतर तै बरतं आबनो कारिबो ताबुक्सिनि सय सिमुं नरगैसिनि बार हा कतरक गोबां मा सामुं तांजागै तंगु गोबां मा सामुं ओंगै तंगु आबचं बुइनि हा कतनि सलक नावैया जों जिनि भारत हा कतनि फान बायनो जिनि भारत हा कतनि रोंसोरोंगै तरनाय लगनाय बर'नि एलेम बायनो सुनामजाक गोबां मा मानै जों मानखा आबनि बिसिंग' आजरानि गंसागांखाय जों पख्रान वान निकुलार टेस्ट खालामनानै आबनि फुनुकमारि जदनसोलाय कतर जों थायमोनो अटल बिहारी बाजपेयी जेफ्रु ब भारत हा कतनि मन्त्रि बख्रक दंमानि बआफ्रु इन्डियानि थिनांनो सावै खाग्रा ख्लायै ब 1989 पख्रान 1/2 ब टेस्ट ख्लायगा बआफ्रु हायुंनो ब साख्लाय रिखा जे भारत हा कतर ब सय सिमुंनि रायदारगै निउक्लियार हा कतर होनै साख्लायगा आव अमहाय मानमारि कतर सोंथै बरमान आबनो कारिब सिनि इन्दिरा गान्धीनि कंनो बसं मासाव इन्दिरा गान्धीनि ब 1971 बब अमाहाय सामुंनि सामुं तांग्रांना बागै ब फाउन्डेसन स्टोन ब कायक्लांखा अम सामुंनि बागै सेल्फ रिलायन्स दै स्ट्रेटेजिक सिक्युरिटिनि बागै जों बैबाय सबाखायनि थाखाय सिन्थानि बसं जोंनि साखाथि मुं दना नांगौ अबले सयन आन बागैनो जों दिनैहाय साल सिनि सय सिमुं जे सामुं खायतंनाय रनो जों खुलुमुं याफारन आपनि लगे जों अमहाय भिजनारि लिडार्स थिनांना हारनाय नुहुरनाय अमहाय भारत हानि मन्त्रि बख्रक रावनो जों मानखा इन्दिरा गान्धी तै अटल बिहारी बाजपेयीहाय बरगाहाय इमान कतर नुमनि बागैनो ताबुक भारतनो जत हानि जत हा कतनि बरक याक दिरे गिया बरमरि ओइमा तंगु हालक गाहामके नारगै मातनु अमनो जों सानानि मुसुंगु जे सालिदार फन फायगा हिंके के बिनि कायसे भिजनारि तंगो नाहार मुं तंगो थिनांनि बागै आबहायनो ओंथाय दे सय सिमुंनो सामुंग थेबनानि बागै ताबुकनि अजरान सय हिनि मानसुगु टेक्न'लजि न लायै ताबुक ए आइ सफायखा अ ए आइ बसुं देबो गाहामखै सिनानै नांनाय अमनो गाहामखै युज खेनाय नांनाय दे सोरोंलायना मोनांनाय हिनै आं खाख्लायो गोसों कग्लामो फायफिननाय हायनो हाय नरनि बागै रसामुं खातिजाक नरक जाजागान होनो खाख्लायो जिनि ताखुक रेसाबकरों बबतुस देवबर्मातेई रेसाबकरों सन्जिता देवबर्मा रेसाबजाक सुरां टकेनि रेसाबमुं खानि ककटुन रेसाबमुं तबु नोंथांनि याफारानो

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल

0: करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है, विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया

0: जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 200,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा, जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा

रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।